सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो हांजी।

0: सबसे दमदार और रोमांचक कहानी
1: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है।
0: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को
1: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
0: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
2: शुरू करो अग्नि परीक्षा
0: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा
1: इंडिया अल्फा से डरेगा।
3: वो वेट कर रहा है तुम्हारा।

0: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
1: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
0: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
2: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
3: Create terror.
0: देखो तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च 17 जुलाई नू।
4: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
5: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
4: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्सटंच।
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो लोकेशन ते मिलनगे।
5: आहो जी आहो,
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी हांजी।
1: हुन थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट choice is

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: Hi, hello, this is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए।

0: सबसे दमदार और रोमांचक कहानी,
1: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है,
0: शानदार एक्शन एंटरटेनर, 3 जुलाई को
1: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
0: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
2: शुरू करो अग्नि परीक्षा
0: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा,
1: इंडिया अल्फा से डरेगा।
3: वो वेट कर रहा है तुम्हारा।
4: भरत मान को दो ही चीजा हुंदिया ने, एक शांति ते दूजा युद्ध। व्हाइट हिल स्टूडियोज लेके आ रहे ने पंजाब दा एक्शन हीरो, देख रो इनेज सरपंच।
5: सरपंच सिर्फ ते सिर्फ पिंड दा होना चाहिदा, किसी राजनीतिक पार्टी दा नहीं।
4: सरपंच एडिशनली स्टारिंग जैस्मीन बाजवा, गुरबाल सिंह एंड सरबजीत चीमा। देखो सरपंच 10 जुलाई नूं नेड़े सिनेमा घरां च।
6: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au। Thank you.

0: जी
1: ठीक हो गया। हाँ जी चलो होपफुली सारे सवाल दे जवाब सब नू मिल गए हो। पर थैंक यू सो मच यादवंत भाजी,
0: थैंक यू बहुत बढ़िया जिन्ने भी अपने लिसनर ने जी मैं सारे यही अपील करूंगा जो तुसी कोई भी थोड़े कोल स्किल असैसमेंट है मेक श्योर करो अपने पॉइंट्स इनक्रीज करने की कोशिश करो ताकि 30 सितंबर का जिहड़ा इनविटेशन राउंड हो रहा है जी
1: काफी हैसल तो जिहड़ा बचिया जा सकदा कई बार अपने ध्यान दे विच नहीं रहिंदियां पर धन्नवाद भाजी बहुत शुक्रिया जी एक बार फिर तो बंसल इमीग्रेशन मेलबर्न तो जुड़े हुए थे फिलहाल प्रोग्राम दे इस सैगमेंट दे विच एना ही दिओ इजाजत।

0: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
1: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
0: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
2: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
3: Create terror.
0: देखो तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च सतारां जुलाई नूं।
4: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
5: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
4: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
5: आहो जी आहो।
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
0: हाँ जी 1674 AM

0: यार तू इतनी नीचे थी, आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au। We'll be right back.

0: दमदार और रोमांचक कहानी,
1: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है,
0: शानदार एक्शन एंटरटेनर। 3 जुलाई को
1: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
0: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
2: शुरू करो अग्नि परीक्षा
0: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा
1: इंडिया अल्फा से डरेगा।
3: वो वेट कर रहे तुम्हारा।
4: रेडियो हांजी 1674 AM 24

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: भैरतमान कोल दो ही चीजा हुंदियां ने, एक शांति ते दूजा युद्ध। व्हाइट हिल स्टूडियोज लेके आ रहे ने पंजाब दा एक्शन हीरो, देख रो इनेज सरपंच।
3: सरपंच सिर्फ ते सिर्फ पिंड दा होना चाहिदा, किसी राजनीतिक पार्टी दा नहीं।
2: सरपंच एडिशनली स्टारिंग जैस्मीन बाजवा, गुरबाल सिंह एंड सरबजीत चीमा। देखो सरपंच 10 जुलाई को तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
4: दिस स्टेशन इज नाउ द अल्टीमेट पावर इन द यूनिवर्स।
5: रेडियो हांजी 16748।

0: सत श्री अकाल जी, मैं हूँ आपकी प्यारी सी लल्ली और आप मुझे चुन रहे हैं रेडियो जीवर 1674 AM।
1: बेबी मेरी हाय हाय कोली मारे, अखियों से हाय हाय कोली।

0: सबसे दमदार और रोमांचक कहानी।
1: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है।
0: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को।
1: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
0: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
2: शुरू करो अग्नि परीक्षा
0: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा।
3: जैस्मीन
4: बाजवा, गुरबाज सिंह एंड सरबजीत चीमा। देखो सरपंच 10 जुलाई नूं तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਵੈਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
3: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
2: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। देखो सरपंच 10 जुलाई नूं तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
4: फुलकारी उत्ते बेल बूटियां, मित्रां दे चादरे ते पा दे मोरी। सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना गिप्पी गरेवाल, तुसीं सुन रहे हो हां जी रेडियो।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: अल्फा
4: सबसे दमदार और रोमांच कहानी।
3: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है।
4: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को।
3: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
4: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
5: शुरू करो अग्नि परीक्षा
4: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा
6: वो वेट कर रहा है तुम्हारा।
7: हाँ जी, मैं मोहित का और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो। हाँ जी, 16748 बेबी।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर स्टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
3: एक अल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
2: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
4: दे हैव स्लेवरी इन देयर ब्लड, वी हैव किंगशिप इन आवर्स।
5: क्रिएट टेरर।
2: देखो दस्तार तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च 17 जुलाई नूं।
6: सतिकाल मैं हां जी शेरगिल ते तुसी सुन रहे हो रेडियो हांजी 1674 AM।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन। व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
2: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
1: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
3: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
4: Create terror.
1: देखो तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च 17 जुलाई नू।
5: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
6: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
5: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
6: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
5: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
6: आहो जी आहो।
5: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। हुन तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
7: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
5: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
1: ਵੈਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਸਰਪੰਚ।
8: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
1: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
5: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
9: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
5: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
9: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
10: अल्फा
11: सबसे दमदार और रोमांच कहानी।
10: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है।
11: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को।
10: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
11: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
12: शुरू करो अग्नि परीक्षा
11: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा
13: वो वेट कर रहा है तुम्हारा।

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
2: Hanji Radio.
3: Alpha.
4: सबसे दमदार और रोमांच कहानी।
3: Alpha program उसका जुनून है।
4: शानदार action entertainer. 3 जुलाई को।
3: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
4: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
5: शुरू करो अग्नि परीक्षा
4: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा
3: इंडिया अल्फा से डरेगा।
6: वो वेट कर रहा है तुम्हारा।

0: थी नीचे थी आके पक्का भी हो गया। की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 ते या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: अच्छा सुनना एक गल दस, सच्ची सच्ची दसेंगा

0: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
1: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
0: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
2: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
3: Create terror.
0: देखो तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च सतारां जुलाई नूं।
4: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
5: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
4: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
5: आहो जी आहो,
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: सबसे दमदार और रोमांचक कहानी
1: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है।
0: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को
1: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
0: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
2: शुरू करो अग्नि परीक्षा
0: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा
1: इंडिया अल्फा से डरेगा।
3: वो वेट कर रहे तुम्हारा।

ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: स्वागत है रेडियो। हाँ जी 1674 AM दे।
1: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: White Hill Studios पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
3: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
2: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
4: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
2: Create terror. देखो तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च 17 जुलाई नू।
5: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
6: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
5: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
6: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
5: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
6: आहो जी आहो,
5: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: यू आर लिसनिंग रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो, सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन। रेडियो हांजी,
7: स्टे ट्यून्ड।

0: सबसे दमदार और रोमांचक कहानी
1: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है।
0: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को
1: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
0: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
2: शुरू करो अग्नि परीक्षा
0: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा
1: इंडिया अल्फा से डरेगा।
3: वो वेट कर रहा है तुम्हारा।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: बेस्ट डील कॉल करो 0431-465-186 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
1: इट्स अ यूनिसेक्स सॉन्ग।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: अल्फा
4: सबसे दमदार और रोमांचक कहानी।
3: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है।
4: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को।
3: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
4: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
5: शुरू करो अग्नि परीक्षा
4: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा
6: वो वेट कर रहा है तुम्हारा।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिल वाले नहीं होते।
3: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

सुनील ग्रोवर, हाँ जी हाँ जी, 1674 ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो सुनते रहो, हाँ जी AM।

0: चलो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा वे लव यू ऑल भावनाओं को समझो। दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर। रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनना होना चाहिए। हांजी हांजी अभी ना कहना ना जी ना जी।

0: This station is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: White Hill Studios पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
3: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
2: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
4: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
5: Create

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, hello, this is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए।

0: हाँ वे सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी हांजी।
1: From India to Miami to the whole world, go ahead and slow it down, girl.

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाय, दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: You are listening
3: Haji Haji Haji Haji Haji Haji Radio Haji
2: Radio Haji 1674 AM 24/7 Indian Radio Sydney ka apna Indian Radio Station
3: Radio Haji
2: Stay tuned
4: She likes to drop it low

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਲਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਬੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: यार तू इतने इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजास, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: ਲਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਬੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

0: महावीर तो को जीवालन हार पुखे को देवत आधार
1: सर्वनदान जाकी दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाहे
0: सब तिसका करने जोग तिस बिंदु सर हुआ न होग
1: जप जान सदा सदा दिन रहनी सब ते उच निर्मल एह करनी
0: कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया
1: जाके मन गुर की प्रति तिस जन आवे हर प्रवचीत
0: भगत भगत सुनिए तिहलोए जाके हृदय को होए
1: सच करनी सच ताकि रहत सच हृदय सत मुख कहत
0: साची दिस साचाया कार सच वर्ते साचा पासार
1: पार ब्रह्म जन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता
0: सुख मनि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ पंद्रह श्लोक
1: रूप न रेख न रंग किछ त्रह गुण ते प्रापिन तिसह बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
0: अविनाशी परम मन में राख मन की तू प्रीत त्याग
1: तिसते परै नाही किछ कोए सर्ब निरंतर एको सोए
0: आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गही सुजाना
1: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद
0: सातरे की चरनी पाओ नानक कै मन इहो अनुराग
1: मनसा पूर्ण शरणा जोग जो कर पाया सोई होग
0: हरन परन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर
1: आनंद रूप मंगल सत जाकै सर्ब थोक सुनिए कर ताकै
0: राज मैं राज जोग मैं जोगी तब मैं तभी सरगस्त मैं भोगी
1: त्याय त्याय भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किनै अंत न पाया
0: जाकी लीला कीमत नाहे सगल देव हारे वगाहे
1: पिता का जन्म के जानै पूत सगल परोई अपने सूत
0: सुमत ज्ञान ध्यान जन दे जन दास नाम ते आवै से
1: तेह गुण मैं जाको परमाए जन्म रह फिर आवै जाए
0: ऊंच नीच तिसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान
1: नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेख करै करंग
0: नाना बितकीनो विस्तार प्रभ बनासी एकंकार
1: नाना चलित करे खिन माहे पूरहे ओ पूर्ण सब ठाए
0: नाना बित कर बंत बनाई अपनी कीमते आपे पाई
1: सब कट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीव नानक हर नाओ
0: नाम के धारे सगले जंत नाम के धारे खंड ब्रह्मंड
1: नाम के धारे सिमरत वेद पुराण नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान
0: नाम के धारे आकाश पताल नाम के धारे सगल आकार
1: नाम के धारे पुरिया सा भवन नाम कै संग उदरे सुन सरवन
0: कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए
1: रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान
0: करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख समय समाणी
1: सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत
0: सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली
1: सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई
0: सत बचन साधु उपदेश सत जन जाके हृदय प्रवेश
1: सत निरत बूझे जे कोए नाम जप ताकि गत होए
0: आप सत की आ सब सत आपे जाने अपनी मित गत
1: जिसकी सृष्ट सो कर नै हार अवर न बूझ करत विचार
0: करते की मीना जाने किया नानक जो तिस पावे सो वर्तिया
1: जिस मन बिसम भय बिस्माद जिन बूझा तिस आया स्वाद
0: प्रभु कै रंग राज जन रहे गुर के बचन पदार्थ लहे
1: कोए दाते दुख काटन हार जाकै संग तरै संसार
0: जन का सेवक सोवड भागी जन कै संग एक ले गुलागी
1: गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे
0: सुख मनि सुख अमृत पव नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ सोलह श्लोक
1: आद सच जुगाद सच है पे सच नानक हो सी पे सच सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
0: चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार
1: दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत आवनहार
0: आप सत सत सवतारी आपे गुणकारी
1: शब्द सत सत प्रभ बखता सुरत सत सत जा सुनता
0: भूजनहार को सत सब होए नानक सत सत प्रव सोए
1: सत स्वरूप हृदय जन मान्या करण करावन तिन मूल पछान्या
0: जाके हृदय विश्वास प्रभाया तत् ज्ञान तिस्मन प्रगटाया
1: पैते निर्भव होए बसाना जिसते उपजा तिस माहे समाना
0: बस्त मैं ले बस्त गडाई ताको भिन न कहना जाई
1: बूझै बूझनहार विवेक नारायण मिले नानके
0: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
1: ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
0: ठाकुर को सेवक जान संग प्रभ का सेवक नाम कै रंग
1: सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक की राखे निरंकारा
0: सो सेवक जिस दया प्रभ तारै नानक सो सेवक सास सास सुमारै
1: अपने जन का पर्दा ढाकै अपने सेवक की सर पर राखै
0: अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई
1: अपने सेवक की आपत राखै ताकि गत मित कोई न लाखै
0: प्रभ कै सेवक को न पहुंचै प्रभ कै सेवक ऊचते ऊचै
1: जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया
0: नीकी कीरी मैं कर राखै पसम करे लश्कर कोट लाखै
1: जिसका सास न काट आप ताको राखत दे कर हाथ
0: मानस जतन करत बो पात तिसके करतो बिरथे जात
1: मारे न राखै अबर न कोए सर्व जियां का राखा सोए
0: काहे सोच करे रे पानी जप नानक प्रभ अलख बडाणी
1: बारम बार बार प्रभ जपिए पी अमृत एहो मन तन तृपिए
0: नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिसके अवर नाही दिसताया
1: नाम धन नामो रूप रंग नामो सुखर

0: ਨਾਮਕ ਸੰਗ
1: ਨਾਮ ਰਸ ਚੂ ਜਨਤਪਤਾ ਨੇ ਮੰਤ ਨਾਮੈ ਨਾਮ ਸਮਾਨ
0: ਉਠਤ ਬੈਠ ਸੋਭਤ ਨਾਮ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦਕਾਮ
1: ਲੋ ਜਾਚੇ ਵਾਦਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀ ਨੀਂਦਾਤ
0: ਰਹਿ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕੈ ਚਾਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉ ਰਹਿ ਹੈ ਸਮਾਏ
1: ਜੋ ਹੋ ਆਹੋ ਵਸੂ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ
0: ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਬਖਾਨੋ ਤਿਸ ਕਾ ਗੁਣ ਕਹੇ ਏਕ ਨ ਜਾਨੋ
1: ਆਠ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿ ਹਜੂਰ ਹੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਪੂਰੈ
0: ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲੇਹੇ ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇਹੇ
1: ਜਿਨ ਜਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ ਸੋਜਨ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ
0: ਤਿਸ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਤਿਸ ਕੈ ਦਰਸਾ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੈ
1: ਅਵਰ ਸਿਆਨ ਸਗਲੀ ਛਾੜ ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ
0: ਆਵਨ ਜਾਨ ਨਾ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਦ ਪੈਰਾ
1: ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਸਤਾਰਾਂ ਸਲੋਕ
0: ਸਤ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਓ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ
0: ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹੈ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ
1: ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੈ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ
0: ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ
1: ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ
0: ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ
1: ਆਪਸ ਕੋ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਤਿਆਵੈ
0: ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ
1: ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵਾਮੀ
0: ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੇ ਆਪ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੇ
1: ਵਿਸ ਵਿਸ ਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨ ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਨ
0: ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਓ ਅਨਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਓ
1: ਸਰਵਨਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ ਆਠ ਪਹਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਦਾਤਾ
0: ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਜਨ ਜਨ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਹੈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਛ ਭਰਮ
1: ਸਹਿਰ ਸਿਆਨ ਪਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈਐ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰੂੜ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ
0: ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ
1: ਸੰਗ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹਿ ਗਵੈ
0: ਸੁਣ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਗਾਨੇ ਮਨ ਸੰਤੋਖਾ ਤੁਮ ਪਤੀਆਂ ਨੇ
1: ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਆਖਿਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਟ ਪੇਖੈ ਹੋਏ ਸੰਤ
0: ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ
1: ਜੇ ਬਾਏ ਕੁਸਤਤ ਅਨੇਕ ਸਤਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬਵੇ
0: ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਬਾਨੀ
1: ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈ
0: ਅਨਕ ਭਗਤ ਬੰਧਨ ਨਿਤ ਕਰ ਹੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਸਮਰ ਹੈ
1: ਸਤ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜਪਨੇ
0: ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਸੋ ਹੋਏ
1: ਪੁਰਤਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਬਿਨਾਸ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਪਟੇ ਗੁਣਤਾਸ
0: ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ ਸੱਚ ਉਪਦੇ ਸੇਵਕ ਕੌਦੇ
1: ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਲੇਪ ਮਨ ਮੈਂ ਰੱਖੈ ਹਰ ਹਰ ਏਕ
0: ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪਰਗਾਸੇ ਨਾਨਕ ਭਰ ਮੋਹ ਦੁਖ ਤਹਿ ਤੇ ਨਾਸੇ
1: ਤਪਤ ਮਾਹੇ ਠੰਡ ਵਰਤਾਈ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਪਾਈ
0: ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ੇ
1: ਪਾਉ ਚੁਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸੇ ਸਗਲ ਵਿਆਦ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ
0: ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਤਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ
1: ਚਿਤ ਪਾਈ ਚੁਕੇ ਭਉ ਗਵਨ ਸੁਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਾਜਾ ਸਰਵਨ
0: ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਭੀ ਉਹੀ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ
1: ਆਪਣੇ ਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾ ਬਨਾਏ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੇ ਆਪੇ ਪਾਏ
0: ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ
1: ਪੋਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ ਪੈ ਪ੍ਰਗਾ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ
0: ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ
1: ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਅਠਾਰਾਂ ਸਲੋਕ
0: ਸਾਥ ਨ ਚਾਲੈ ਬਿਨ ਭਜਨ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵ ਨਾ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਧਨ ਸਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਸੰਜਨਾ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਏਕ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ
0: ਅਵਰੋ ਪਾਸਾ ਮੀਤ ਵਿਸਾਰੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਮੈਂ ਉਰਧਾਰ ਹੋ
1: ਕਰਮ ਕਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਗਹੋ ਨਾਮ ਹਰ ਰਥ
0: ਇਹੋ ਧਨ ਸੰਚੋ ਹੋਵੋ ਭਗਵੰਤ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ
1: ਏਕ ਆਸ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਹੇ
0: ਜਿਸ ਧਨ ਕੋ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਉਠਤਾ ਵੈ ਸੋ ਧਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵ ਹੈ
1: ਜਿਸ ਕੋ ਨਿਤ ਬਾਛੈ ਮੀਤ ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ
0: ਜੇ ਸੋਭਾ ਕੋ ਕਰਹਿ ਭਲੀ ਕਰਨੀ ਸਾ ਸੋਭਾ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸਰਣੀ
1: ਅਨਕੋ ਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨ ਜਾਏ ਰੋਗ ਮਿਟੇ ਹਰ ਔਖ ਦਲਾਏ
0: ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮਹਿ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਰ ਗੈ ਪ੍ਰਵਾਨ
1: ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੋ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ ਦਰਦ ਸਤਾਵਤ ਆਵੈ ਠਾਏ
0: ਕਾਕੋ ਬਿਗਨ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ ਹਰ ਸੋਏ
1: ਕਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਹਰ ਨਾਓ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਓ
0: ਭਉ ਬਿਨ ਸਹਿ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ ਭਗਤ ਭਾਏ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ
1: ਸਿਤ ਕਰ ਜਾਏ ਬਸੈ ਅਬਨਾਸੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮਫਾਸੀ
0: ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਜਨ ਸਾਚਾ ਜਨਮ ਰਹਿ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ
1: ਆਵਾ ਗੁਣ ਮਿਟੇ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਰਨ ਗੁਰਦੇਵ
0: ਇਉਂ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ
1: ਅਨਕੋ ਪਾਵਨ ਛੂਟਨ ਹਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ
0: ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੂ ਮਨ ਲਾਏ ਮਨ ਬੰਛਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ
1: ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਸ ਤੇਰੇ ਧਨਾ ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵੈ ਮੂਰਖ ਮਨਾ
0: ਸੁੱਤ ਮੀਤ ਕੁਟਾਂਬਰ ਬਨ ਤੈਨ ਤੇ ਕਹੋ ਤੁਮ ਕਵਨ ਸਨਾਥਾ
1: ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਵਿਸਥਾਰ ਇਨ ਤੇ ਕਹੋ ਕਵਨ ਛੁਟਕਾਰ
0: ਅਸ ਹਸਤੀ ਰਥ ਸਵਾਰੀ ਝੂਠਾ ਡੰਫ ਝੂਠ ਪਾ ਸਾਰੀ
1: ਜਿਨ ਦੀਏ ਤਿਸ ਬੁਝੇ ਨਾ ਬਿਗਾਨਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਨਾਨਕ ਪਛਤਾਨਾ
0: ਗੁਰ ਕੀ ਮਾਤੋਂ ਲਿਹੇ ਇਆਨੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ
1: हर की पद करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत।
0: चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाहे।
1: आप जप हो अवरै नाम जपावो, सुनत कहत रहत गत पावो।
0: सार भूत सत हर को नाओ, सहज सुभाए नानक गुण गाओ।
1: गुण गावत त्रि उत्तर समैल, बिनस जाए हो मैं बिख फैल।
0: होहे अचिंत बसै सुख नाल, सांस ग्रासर नाम संभाल।
1: छाड़ सियान पसगली मना, सात संग पावे सजतना।
0: हर पूंजी सांच करो व्यवहार, इहां सुख दर गै जयकार।
1: सर्व नरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्त कलेख।
0: एको जापे को सालाहे, एक सिमर एको मन आहे।
1: एक सके गुण गाओ अनंत, मंतन जाप एक भगवंत।
0: एको एक एक हर आप, पूर्ण पूरहे ओ प्रभ आप।
1: अनक विस्तार एक ते भय, एक अराध पराजित गए।
0: मन तन अंतर एक प्रभ राता, गुर प्रसाद नानक एक जाता।
1: सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। 8-19 श्लोक।
0: फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरनाए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए। सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी।
1: जाचक जन जाचै प्रभ दान, कर कृपा देवो हर नाम।
0: साध जना की मांगो तूर, पार ब्रह्म मेरी शरदा पूर।
1: सदा सदा प्रभ की गुण गाओ, सास सास प्रभ तुम्हें ते आओ।
0: चरण कमल स्यों लागे प्रीत, भगत करो प्रभ की नित नीत।
1: एक ओट एको आधार, नानक मांगे ना प्रभ सार।
0: प्रभ की दृष्ट महा सुख होए, हर रस पावे बिरला कोए।
1: जिन चख्या से जन तृप्ता ने, पूर्ण पुरख नहीं डोला ने।
0: सो भर भरे प्रेम रस रंग, उपजै चाओ साध कै संग।
1: परे शरण आन सब त्याग, अंतर प्रगास अंध निर्लाग।
0: बड़ भागी जपया प्रभ सोए, नानक नामर ते सुख होए।
1: सेवक की मनसा पूरी भई, सतगुर ते निर्मल मत लई।
0: जन को प्रभ होए ओ दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल।
1: बंधन काट मुकत जन भया, जन्म मरण दुख परम गया।
0: पिछ पुनी शरदा सा पूरी, रब रहया सत्संग हजूरी।
1: इसका सा तिन लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए।
0: सो क्यों बिसरै जे काल न पानै, सो क्यों बिसरै जे किया जानै।
1: सो क्यों बिसरै जिन सब कुछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया।
0: सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै।
1: सो क्यों बिसरै जे बिकते काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गाढ़ै।
0: गुरपूरै ताते है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया।
1: साजन संत करो हो काम, आन त्याग जपो हर नाम।
0: सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरह नाम जपावो।
1: भगत पाए त्रिये संसार, बिन भगति तन हो सी चार।
0: सर्व कल्याण सुख निध नाम, बूट जात पाए विश्राम।
1: सगल दुख का हो तनास, नानक नाम जपो गुणतास।
0: उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तन अंतर एही सुआओ।
1: नेत्रो पेक तरस होए, मन बिकसै साधु चरण तोए।
0: भगत जना कै मन तन रंग, बिरला को पावे संग।
1: एक बस दीजे कर मया, गुर प्रसाद नाम जप लया।
0: ताकी उपमा कही न जाए, नानक रहया सर्ब समाए।
1: प्रभ बख्शन दीन दयाल, भगत वछल सदा कृपाल।
0: अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्ब कटा करत प्रतपाल।
1: आद पुरख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार।
0: जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत पाए लावे मन ही।
1: हम निर्गुण यार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान।
0: सर्ब कुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमख हर के गुण गाए।
1: अनक राज भोग वडे आई, हर के नाम की कथा मन भाई।
0: बहु भोजन कापर संगीत, रसना जपती हर हर नीत।
1: पली सुकरनी शोभा धनवंत, हृदय बसे पूरन गुरुमंत।
0: साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक प्रगास।
1: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। 8-20 श्लोक।
0: सरगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप। अपन किया नानका, आपे ही फिर जाप। सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी।
1: जब अकार कुछ न दृष्टि, ताप पुण तब कहते होता।
0: जब तारी अपन सुन समाद, तब बैर विरोध के संग कमात।
1: जब इसका वरन चिन्ह न जापत, तब हर सो को किसे व्याप्त।
0: जब अपन आप पार ब्रह्म, तब हो कहां किस होवत परम।
1: अपन खेलिया वर्ती जा, नानक करने हार न दूजा।
0: जब होवत प्राव केवल तानी, तब बंद मुक्त कहो किसको गानी।
1: जब एक हर गम अपार, तब नरक सुरक को कौन अवतार।
0: जब निर्गुण प्राव सहज सुभाए, तब शिव शक्त कहो हो कित ठाए।
1: जब आपे आप अपनी जोत धरे, तब कौन निडर कौन कत डरे।
0: आपन चले तब करने हार, नानक ठाकुर अगम पार।
1: अविनाशी सुख अपने आसन, तय जन्म मरण को कहा विनाशन।
0: जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए।
1: जब अवगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा।
0: जब नाथ निरंजन अगोचर गादे, तम कौन छुटे कौन बंधन बादे।
1: आपन आप ही अचर जा, नानक आपन रूप आप ही उपर जा।
0: जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तूता।
1: जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन को मान कौन अभिमान।
0: जह स्वरूप केवल जगदीश, तह छल छिद्र लागत कहो कीस।
1: जह जो स्वरूपी ज्योत संग समावै, तह किसै भू कौन तृप्तावै।
0: करन करावन करने हार, नानक करते का नाही सुमार।
1: जापनी सुवा आपन संग बनाई, तब कौन माए बा मित्र सुत भाई।
0: जह सर्व कला आपह परवीन, तह वेद कतेव कहां कोचीन।
1: जब आपने आप उड़ता रहे, तो सगन अपसगन कहां बीचार है।
0: जह आपन ऊच आपन आप नीरा तह कौन ठाकुर कौन कही है चीरा
1: बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी का जानो आप
0: जह अछल अछेद अपीद समाया ऊहा किसह व्याप्त माया
1: आपस को आपे आदेश तिहु गुण का नाही प्रवेश
0: जह एक है एक एक भगवानता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता
1: जह आपन आपा पतियारा तह कौन कथे कौन सुन नहारा
0: बहु बेअंत ऊच ते ऊंचा नानक आपस को आप है पहुंचा
1: जह आप रचियो पर पंच आकार तिहु गुण में कीनो विस्तार
0: आप पुन तह पई कहावत को नरक को स्वर्ग बंशावत
1: आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पैपार
0: दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की ओ बख्यान
1: अपन खेल आप कर देखै खेल संकोच है तो नानक एक है
0: जह अवगत भगत है आप जह पसरै पासार संत प्रताप
1: का आपै धनी उनकी शोभा उन्हों बनी
0: आप है कौत करै आनंद चोज आप है रस भोगन निर्जोग
1: जिस भावै तुस अपन ना लावै जिस भावै तुस खेल खिलावै
0: बेशुमार अथा अगंत अतोलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै
1: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ इक्की श्लोक
0: जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार सत नाम श्री वाहेगुरु अष्टपति
1: आप कथे आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार
0: जा तिस भावे ता सृष्टो पाए अपने भाणे लय समाए
1: तुम ते पिन्ने किछ होए आपन सूत सब जगत परोए
0: जाको प्रभ जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए
1: सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल सिष्ट का जेता
0: जी जंत्र सबता कह हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ
1: जिस राख है तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे
0: तिस्ता जबर कहां को जाए सब सिरे एक निरंजन राए
1: जी की जुग जाके सुभात अंतर बाहर जानो साथ
0: गुण निदान बे अंत पार नानक दास दा बलिहार
1: पूरन पूर रह दयाल सब ऊपर होवत कृपाल
0: अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो ब्याप
1: तत्पालै जीअन बो पात जो जो रचियो सुत सह त्यार
0: जिस भावै तिस लय मिलाए भगत करै हर के गुण गाए
1: मन अंतर विश्वास कर मानिया करनहार नानक इक जानिया
0: जन लागा हर एक नाए तिसकी आसन बिरथी जाए
1: सेवो को सेवा बने आए हुक्म बूझ परम पद पाए
0: इसते ऊपर नहीं विचार जाकै मन बसिया निरंकार
1: बंधन तोर पै निर्वैर अंधिन पूजै गुर के पैर
0: एह लोक सुखी पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपह मेले
1: साध संग मिल करो आनंद गुण गावो परमानंद
0: राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देह का करो उदार
1: अमृत बचन हर की गुण गाओ प्रांत नुनका एह सुआओ
0: आठ पहर प्रापी खुह नीरा मिटै अज्ञान बिन सहंधीरा
1: सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छा नानक फल पावो
0: हलत पलत दोय लिहो सवार राम नाम अंतर उरतार
1: पूरे गुर की पूरी दिखिया जिसमन बसै ते साच परीखिया
0: मनता नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते पौ जाए
1: सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निभै खेप तुम्हारी
0: टीका टीक रखो मन माही नानक बहर न आवै जाहे
1: इसते दूर कहा को जाए उबरे रख न हार ते आए
0: निरभउ जपै सगल भउ मिटै प्रभु कृपा ते प्राणी छुटै
1: जिस प्रभ रखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख
0: चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार
1: सिर उपर ठाडा गुरसूरा नानक ता कै कारज पूरा
0: मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखत उदरत सृष्ट
1: चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप
0: धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान
1: जिस मन बसे सोत निहाल ताके निकट न आवत काल
0: अमर भय अमरा पद पाया साध संग नानक हर ध्याया
1: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भल जना कै मन विश्राम अठ बाई श्लोक
0: ज्ञान अंजन गुरदिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास सत नाम श्री वाहेगुरु अष्टपदी
1: संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु काला का मीठा
0: सगल समिग्री एक स्कट माहे अनक रंग नाना दृष्टा हे
1: नौनद अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम
0: सुन समाध अनहत तै नाद कहन न जाई अचार्य विस्माद
1: इन देखिया जिस आप दिखाए नानक ते सन सो जी पाए
0: सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहिया भगवंत
1: करन माहे आकाश पयाल सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल
0: वंतन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म
1: पौन पानी बैसंतर माहे चार कुंड दै दिसै समाहे
0: किसते भिन्न नहीं को ठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ
1: वेद प्राण सिमरत मैं देख ससियर सूर नखत्र मैं एक
0: वाणी प्रभु की सब को बोलै आप अडोल न कबहु डोलै
1: सर्व करा कर खेलै खेल मोल न पाइय गुणे अमोल
0: सर्व ज्योत मह जाकी ज्योत धार हे ओ स्वामी ओत पोत
1: गुर प्रसाद परम का नाश नानक तिन मैं एहो विसास
0: संत जना का पीखन सा ब्रह्म संत जना कै हृदय सब धर्म
1: संत जना सुने सो बचन सर्व व्यापी राम संग रचन
0: जन जाता तिसकी एह रहत सत बचन साधु सब कहत
1: जो जो होए सो इश्क माने करन करावन हर प्रभ जाने
0: अंतर बसे बाहर पी ओही नानक दर्शन देख सा मोही
1: आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत
0: तिस भावै ता करे बे विस्तार तिस पावै ता एक अंकार
1: अनकला लखी न जाए जिस पावै तिस लय मिलाए
0: कवन लिप्त कवन कहिए दूर आपे आप आप भरपूर
1: अंतरगा जिस आप जनाए नानक तिस चन आप बुझाए
0: सर्व भूत आवरतारा सर्व नैन आपे खनहारा
1: सगल समगरी जा का तना आपन जस आप ही सुना
0: आवन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया
1: सबके मदल पत्तो रह जो कुछ कहना सो आपे कह
0: आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता लय समाए
1: इसते होए सुनाही बुरा उरे कहो किने कुछ करा
0: आप ला कर तू ततनी की आपे जाने अपने जी की
1: आप साज तारी सब साज ओत पोत आपन संग्राज
0: ताकि गत मित कही न जाए दूसर होए ता सोजी पाए
1: इसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक हो जान
0: जो जाने ते सदा सुख होए आप मिलाए लय प्रभ सोए
1: ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवान
0: धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया
1: जा नामन कहे सुआओ जन कह संचित आवे नाओ
0: आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार
1: सुख मनी सुख अमृत पव नाम भग जना के मन विश्राम अठ तेई श्लोक
0: पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पे
0: सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस नित्या गो तरंग संत जना की दूर मन मंग
0: आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरहो
1: हर तन के भर लियो भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार
0: खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद
1: नरक निवार उद्धारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो
0: चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपा
0: सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन अमोलिक लाल एह रतन
0: संत कमावत हो तो उधार आप तरह लोक कह निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग
0: जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजय
1: प्रगटे गोपाल महत के माथे नानक उतरे तिन कै साथे
0: शरण जोग सुन शरणी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए
1: मिट गए बैर पे सबरेन अमृत नाम साथ संग लैन
0: सो प्रसन्न भए गुरुदेव पूर्ण हुई सेवक की सेव
1: हाल जंजाल बिकार ते रहते राम नाम सुरसना कहते
0: कर प्रसाद दया प्रभु तारी नानक निभि खेप हमारी
1: तब की उस्तत करो संत मीत सावधान एकागर चीत
0: सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान
1: सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
0: सब ते ऊच पाए स्थान बहर न होवे आवन जान
1: हर दिन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए
0: खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग पव ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
0: चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मध सगल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बीता समदर्शी एक दृष्टि
0: फल तिस जन कै मुख पाने गुरु नानक नाम बचन मन सुने
1: इहो निधान जपै मन कोए सब जुग मैं ताकि गत होए
0: गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी
1: सगल मतात केवल हर नाम गोविंद भक्त कै मन विश्राम
0: कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जन ते छुटै
1: जा कै मस्तक क्रम प्रपाए साध शरण नानक ते आए
0: जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभु चीत
1: जन्म मरणता का दुख निवारै दुर्लभ दे तत्काल उधारै
0: निर्मल शोभा अमृता की बानी एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से बै परम साध नाम निर्मलता के करम
0: सब ते उचता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी सब ते उचता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम पत जना कै मन विश्राम अठ चौबी

0: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू पूर्वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431 465 186 ते 212216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
3: जुगाड़ नहीं ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा
3: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au

0: 55 वर्ष की आयु में मैंने यही महसूस किया कि जीवन बहुत सारे सुनहरे अवसरों से भरपूर है। साथ ही साथ मैंने प्यार और प्रकाश की शक्ति को भी महसूस किया। थोड़े समय से मैं अनुभव कर रहा था कि मैं जिससे भी मिलता हूं वो कुछ ना कुछ खोज रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कि मैं कुछ विशेष, शायद खुशी, संतोष, मन की शांति। 10 मास पूर्व मेरी मुलाकात लंदन में एक महान आदरणीय योगी से हुई। तब से एक लंबी तलाश के पश्चात मेरा जीवन एक दरिया के समान धीरे धीरे विशाल सागर की ओर बहने लगा। इस मुलाकात के थोड़े समय बाद ही माउंट आबू राजस्थान से मुझे पीस ऑफ माइंड कॉन्फ्रेंस के लिए निमंत्रण मिला, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। इसे प्यार से मधुबन कहा जाता है। भारत यात्रा की मेरी बरसों की इच्छा थी और ये था मेरे लिए समय का बुलावा। उस महान योगी ने मुझे 2 प्रश्नों पर गहराई से विचार करने को कहा था। मैं कौन, परमात्मा कौन? मेरे दिल की गहराई से बार बार यही आवाज आ रही थी कि इस यात्रा में मेरे प्रश्नों का समाधान अवश्य ही मिल जाएगा। भारत पहुंचने के पश्चात जल्दी ही वहां की सड़कों पर निरंतर चलने वाली गाड़ियों के हॉर्न की आवाजों और स्वच्छंद रूप से विचरण करते पशुओं से मैं परिचित हो गया। माउंट आबू जाने के मुख्य रास्ते पर हमने ऊंट गाड़ियां देखी, उनके कारण जगह जगह हमें रुकना भी पड़ा। खैर, हम सही सलामत ठीक समय पर आबू रोड पहुंच गए। आबू रोड अरावली पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। माउंट आबू समुद्र तल से 4000 फीट की ऊंचाई पर है। यहां पहुंचने के लिए हम 1 घंटे तक संकरे और घुमावदार पहाड़ी विस्तार में पढ़ते रहे। हरे भरे मन भावन दृश्यों को देखते देखते अंततः ज्ञान सरोवर प्रांगण में पहुंचे। इसका दूसरा नाम एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड भी है। वहां पहुंचते ही वहां का वातावरण बाह्य जगत से बिल्कुल ही भिन्न महसूस हुआ, जैसे कि हम निर्वाण में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अपने वास्तविक घर में पहुंच गया हूं। इस परिसर में चारों तरफ स्नेह और अपनत्व का आभास हो रहा था, जैसे एक परिवार, एक नए परिवार, एक वैश्विक परिवार का हिस्सा हूं। सुव्यवस्था और स्वच्छता हर तरफ विद्यमान थी। सुंदर फूलों, पेड़ पौधों और हरे भरे घास के मैदानों से हर कोना सजा हुआ था। अत्यंत गहरी शांति की महक चारों तरफ छाई हुई थी। एक ऐसा स्थान जहां शोरगुल का और किसी अप्रिय बात का नामो निशान न था। सहयोग, सद्भावना, सादगी, सहनशीलता, एकता और सम्मान के गुण सर्वत्र दिखाई दे रहे थे। वायुमंडल में चंपा और चमेली की महक से भीगी खुशी और आनंद की तरंगें फैली हुई थी, जो अलौकिक आनंद की अनुभूति करा रही थी। इस विश्वविद्यालय द्वारा माउंट आबू में बनाया गया ज्ञान सरोवर दूसरा कॉम्प्लेक्स था। 1995 में पूर्ण किए गए इस कैंपस में 1500 मेहमानों को ठहराने की उत्तम व्यवस्था के साथ साथ 250 समर्पित राजयोगियों के रहने का संपूर्ण प्रबंध है। रात्रि भोजन के पश्चात हमें इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के संक्षिप्त इतिहास से अवगत कराया।
1: जब उनसे पूछा जाता है,
0: 1936 में 60 वर्ष की उम्र में ब्रह्मा बाबा के द्वारा माताओं बहनों के छोटे से संगठन को लेकर इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई। उस परम शक्ति द्वारा कई दिव्य साक्षात्कार कराए गए, जिन्हें परमात्मा, शिव, अल्लाह आदि कई नामों से जाना जाता है। उन्होंने स्वयं को गुरु नहीं बल्कि परमात्मा का माध्यम माना। ब्रह्मा बाबा पहले एक सुप्रसिद्ध रईस और हीरों के भारतीय व्यापारी थे। इन्होंने माताओं और बहनों को संस्था के संचालन का संपूर्ण कार्यभार देकर उन्हें सम्मानित कर शक्तिशाली बनाया। इन्होंने 93 वर्ष की आयु में अपने भौतिक शरीर को त्याग कर संपूर्णता को प्राप्त किया। के अव्यक्त होने के बाद इस संस्था का विस्तार तीव्र गति से हुआ। वर्तमान समय में इस संस्था का कारोबार उन महान विभूतियों के द्वारा हो रहा है जिनकी आयु प्रायः 80 वर्ष के नजदीक है और वे दादी के रूप में जानी जाती हैं। दादी यानी बड़ी बहन, जिन्होंने संस्था के प्रारंभ में स्वयं को सेवा के प्रति तन मन धन से समर्पित किया। यहाँ की हर सेवा मातृत्व स्नेह की झलक दे रही थी। ये दादियाँ अपनी बड़ी उम्र के बावजूद पूरे विश्व में अथक रूप से निस्वार्थ सेवा हेतु भ्रमण करती रहती हैं। उसके बाद हमारा परिचय दादी प्रकाश मणि जी से कराया गया, जो इस विश्वव्यापी संस्था की मुख्य प्रशासिका है। मुझे ज्ञात हुआ कि ब्रह्मा कुमारी इसका वास्तविक अर्थ है ब्रह्मा की पुत्री। 1936 में अपनी बाल्य अवस्था में ही दादी जी ने इस संस्था में पदार्पण किया। तत्पश्चात इस मायावी दुनिया से संपूर्ण रूप से अलग हो गईं। वे एक बहुत ही कुशल संचालिका के रूप में भी उभर कर सामने आई। समग्र विश्व की राजनैतिक और आध्यात्मिक विभूतियों द्वारा उनको बहुत अधिक सम्मान प्राप्त है। दादी जी ने बताया, आध्यात्मिकता मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है जो सबके जीवन से प्राय लुप्त हो चुका है। दादी जी से संपूर्णता में प्राप्त होते ही शुद्धतम स्वर्णिम ईश्वरी प्रेम के स्पंदन, सद्भावना शांति और समृद्धि से संपन्न योग, जहां शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हो, जिसकी कल्पना सदियों से मानव करता रहा है, जहां क्रोध स्वार्थ और बेईमानी का नामो निशान ना हो। आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा ही मानवता का पुनरुत्थान संभव है। मेरे बाकी के दिन वार्तालाप श्रृंखलाओं, सेमिनारों, योगाभ्यास, अन्य परिसरों के परिभ्रमण, सैर, खरीदारी, दर्शनीय स्थलों के अवलोकन, पिकनिक, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बीते। इसी दौरान हमने दिलवाड़ा मंदिर भी देखा, जो भारत में जैन वास्तुकला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। परिसर विहार के अंतर्गत ये देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि अत्यंत दुर्गम स्थान पर स्थित होते हुए भी यहाँ उच्च तकनीकी के साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। यहाँ पर भोजन पकाने, पानी गर्म करने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ टेलीफोन एक्सचेंज, कंप्यूटर और आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था के लिए भी विद्युत उत्पादन सौर ऊर्जा से ही होता है। मैंने इस बात पर भी गौर किया कि यहाँ पर भोजन भी परमात्मा की याद में ही रहकर बनाया जाता है, जहाँ शुद्ध रूप से शाकाहारी भोजन की व्यवस्था है। उस दिन का प्रमुख प्रवचन दादी जानकी द्वारा दिया गया, जो इस संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका है। दादी जानकी जी लंदन में रहकर विदेश सेवाओं का संचालन करती हैं। दादी जी को एक कुशल वक्ता और मार्गदर्शक होने का वरदान प्राप्त है। अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों से ही दूसरों के हित का ख्याल रखना दादी जी की विशेष धारणा रही है। एकाग्रचित स्थिति और संपूर्ण दृढ़ता, ये दोनों ही गुण इनके जीवन की विशेष शोभा है। दादी जी बुद्धिमत्ता के वाहक नामक ईश्वरीय और धार्मिक गुरुओं के उस संगठन के सदस्य हैं, जो राजनेताओं को पर्यावरण एवं मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आधारित सलाह देता है। इन दादियों की विनम्रता, निस्वार्थ प्यार, निरहंकारिता, विनोद वृत्ति और हृदय की विशालता से हर कोई प्रभावित होता है। उनका अपना कुछ न होते हुए भी वो संसार को सब कुछ दे रही हैं। ये दादियां अपने कार्य चेहरे पर शिकन लाए बिना अथक रूप से करने के लिए विख्यात हैं। शायद ही ऐसा कोई प्रसंग होगा जब दादियों से भेंट के दौरान टोली अर्थात प्यार से निर्मित प्रसाद न प्राप्त हुआ हो। सिर्फ शरीर ही नहीं, मन एवं बुद्धि को भी रूहानी स्थिरता मिलती है। दृष्टि दो व्यक्तियों के बीच सरल वार्तालाप का माध्यम है, जिसके द्वारा दूसरी आत्मा के अंतर जगत को गहराई से देखा जा सकता है। हर एक रूहानी हस्ती में छुपी पवित्रता और प्रकाश की शक्ति और उसके सद्गुणों का दर्शन भी किया जा सकता है। एक दिन हम मधुबन भी गए, जो ब्रह्मा बाबा की तपस्या स्थली है। यहीं से ही संस्था की व्यवस्था संचालित होती है। यहाँ पर अभी भी बहुत सारे वरिष्ठ भाई बहन रहते हैं। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पहुँचने मात्र से ही अति सहज रूप से शांति की गहरी अनुभूति होती है। योगी जीवन का अर्थ सिर्फ गंभीर हो जाना ही नहीं, सर्वत्र व्याप्त खुशी और आनंद का माहौल ध्यान देने योग्य था। इसकी एक सुंदर झलक यहाँ के दर्शनीय और मनोरंजक पीस पार्क में भ्रमण के दौरान मिली।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: के कंबल ऐसे फोल्ड करके थल्ले रख दे, तेज कर दे, ते फिर ऐसे वो रोटी शाला मार दे।
1: अच्छा फिर आपे ठंडा अट जाती है। आ भी गुड है,
2: आ भी बढ़िया तरीका है।
0: ते ऐसे जुंडे पट दे।
1: अच्छा जुंडे भी पट दे, ओके।
3: फिर तक ठंड गई के
1: पट पटवाऊं दे भी हो के कपाट दे ही हो
0: पटवाऊं दे।
1: अच्छा पटवाऊं दे,
3: माड़ी गल है यार।
1: ते की सुनाओगे फिर आज?
0: एक बोली।
1: हाँ जी।
0: आलू ले लो, टमाटर ले लो, आलू ले लो, टमाटर ले लो, गोभी ले लो, ले लो तोड़ के, गोभी ले लो तोड़ के, अमरूद ने कुट खादी पिंडी अगे
1: बोल के, अमरूद ने
0: कुट खादी पिंडी
1: अगे
0: बोल के,
1: वे दागी हो गया वे मरुदा, वे तू कातों बोलिया वे
3: सावरकोटी साहब,
1: तेरा एक पासा मार दिता वे, वे तेनू
3: लगल
1: के सुटना पै गया वे सड़ी जई पिंडी तेनू मोटे लोटे नू
0: सरीरी होड़ी पंडी
1: आवे वे फेट पिंडी नू वे मरुदा।
3: कल रोका होया तो हुण अज पै भी गईया है, देख लो काम
1: नहीं रोका ते अज ही सच ते अज रोका ही
3: चल रोका दा अज
1: हैं विचोली
3: एदा ना करो यार
1: हैं भैन विचोली अज रोका नहीं तुहाडी पिंडी दा
0: हैगा
3: मैं तो लड़ाई करा
0: दे अज असि
1: फिर तेल गर्म करके भिंडी ओने विच पा देड़ी आपां
3: अमरूद नहीं पा सकते काचू रखिया काचू
1: हां आ चीरा लाना विच हल्दी थोड़ा जा लून ते थोड़ा जा गर्म मसाला पा के विच गर्म गर्म तेल दे विच सुटनी भिंडी
3: वाह
1: फिट भिंडी वेखी फिर स्वादी बन के
3: निकलदी स्वादी बन जांदी
1: बन के निकल
0: पिंडी बनाई।
1: अच्छा तुही बनाई ही? चलो तुही व्याहुणी ही के तुही बनाउणी ही?
0: दोनों।
3: ओ देख रहे ना कि रेडी है कि नहीं व्याह वास्ते।
1: हाँ
3: ये भी देखिया करो ना गल ओनू हजे नसीहतां दे रहे
0: अज पिंडी खानी नाल रोटी
1: ओई परौंठी खायो नाल परौंठी
3: हाँ
1: पकौड़ी दूजिया केड़िया पकौड़िया तवे वालिया के जेडिया रेडीमेड आंदिया करो फिर इंजॉय तुसी भिंडी खा के ते बाद च फिर जर्दा खा लियो। थैंक यू
3: थैंक यू
1: बाय बाय बाय बाय थैंक यू। लास्ट साडे नाल होगी अनहद। सत श्री अकाल अनहद सॉरी सत श्री अकाल अनहद।
4: सत श्री अकाल अंकल जी ते अंकल जी।
1: सत श्री अकाल की हाल
4: तुहाडा?
1: भिंडी पसंद कर दे हो?
4: हां जी।
1: कादे नाल? परौंठी ना के रोटी ना के लच्छे परांठे ना?
4: रोटी नाल।
1: सादी रोटी नाल?
4: हां जी।
1: ओके ते नाल की लोगे? दही के दूध के सब्जी के दाल? पीली दाल। पीली दाल
3: ओ गुड। हाँ
1: लस्सी
3: लस्सी हाँ बेटर बेटर
1: बटर नहीं
3: नहीं बेटर बेटर
4: पर

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
3: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
2: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
4: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
2: Create

ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए।

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन.com।

सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो हांजी।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे, लव यू ऑल, भावनाओं को समझो। दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हाँ जी पर, रेडियो हाँ जी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हाँ जी सुनना होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, अभी ना कहना ना जी ना जी।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच,
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवरस्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: अल्फा
4: सबसे दमदार और रोमांच कहानी।
3: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है।
4: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को।
3: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
4: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
5: शुरू करो अग्नि परीक्षा
4: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा
6: वो वेट कर रहा है तुम्हारा।
7: हाय हेलो, दिस इज अली असगर हियर ऑन रेडियो हाजी 1674 AM। सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए,